0: जी जी ठीक सिंह सिंह
1: I'll be responding to Ryder for the merchant.